0: हार्दिक आमन्त्रण यही जेठ 24 गतेदेखि 28 गतेसम्म दैनिक रूपमा बिहान 4:30 बिहान 6:30 पतञ्जलि योगपीठ नेपालकी प्रथम सन्यासी आदरणीय गुरु पूज्य साधवी श्री देवकृपा ज्यूबाट योग कक्षा सञ्चालन हुने हुँदा सम्पूर्ण इच्छुक महानुभावहरूमा हार्दिक आमन्त्रण गर्दछौ। बृहत योग विज्ञान शिविर उद्घाटन हुने दिन यही जेठ 24 गते समय बिहान 4:30 बिहान 6:30 स्थान ठाकुरबाबा नगरपालिका साथ कानपुर स्थित खेल मैदान मोहनपुर बर्दिया।
1: गर्जन छ सधैँ बाघ झैं रेडियो टाइगर 99.2 मेगाहर्ज।

नहीं मरना गवारा प्यार में, तुमसे ये कहना है तुम्हें भी जिंदा रहना है, मुझे भी जिंदा रहना है।

0: ड्रम, दार किन लगायत प्लास्टिक का सामानहरू पाइनका साथै सम्पूर्ण किसिमका भाँडाहरू सुथक मूल्यमा चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोस्। प्रोपराइटर सरस्वती शर्मा, सम्पर्क नम्बर 98589453। प्रतिमा प्लास्टिक एन्ड ट्रेडर्स, गुलरिया रोड, किसान एडु नजिकै भुरीगाउँ बजार, बर्दिया।
1: बच्चाहरूलाई घरमै बनेको पोसिलो खाना 6 महिनापछि अनिवार्य रूपमा शुरूवात गरौं। अन्न, गेडागुडी, साग सब्जी, फलफूल सहितको पोसिलो पूरक खानाले बच्चालाई तन्दुरुस्त बनाउँछ। पूरक खाना सँगसँगै 2 वर्षसम्म स्तनपान पनि जारी राखौं। रेडियो टाइगर 99.2 MHz र स्वास्थ्य कार्यालय बर्दियाद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
2: रेडियो रेडियो टाइगर बर्दिया की आवाज, वॉइस ऑफ बर्दिया, वॉइस ऑफ बर्दिया।